0: रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज
1: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कूटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने सोरुम दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि फोन नम्बर 9816091013
2: मामासँग हल्का रमाइलो

0: हिमशिखर टाइम चेक
1: अहिले 5 बज्यो। यस टाइम चेक का प्रायोजक
2: सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र CSCI एजुकेशन फाउन्डेसन दमक।

0: हिमशिखर टाइम चेक
1: अहिले 6 बज्यो। यस टाइम चेक का प्रायोजक
2: सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र CSCI एजुकेशन फाउन्डेसन दमक।

0: रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज।
1: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कूटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने सोरुम दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि। फोन नम्बर 9816091013।
2: मामाईसँग हल्का रमाइलो

0: ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक हिमशिखर टाइम चेक
1: अहिले 7 बज्यो यस टाइम चेक का प्रायोजक
2: सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र सीएससीआई एजुकेशन फाउन्डेसन दमक

फिर वही फुर्सत है रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत है रात दिन बैठे रहे सब रे

0: हरिया हरिया
1: ग्लोबल आईएमई बैंक सबई का लागी बैंक
2: हिमशिखर टाइम चेक
3: अहिले 12 बज्यो यस टाइम चेक का प्रायोजक
4: सबै भन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र सीएससीआई एजुकेशन फाउंडेशन दमक